मैं आपको वेलानी ओथेला सोला का कमी ठुकी है वन्नी तो मेरे रिवा वेरा महाकुम वथेला तो कंपेयर के भी ठुकी हाँ एनो भी हुए ती है लवो नी हुए हाँ ये मारी यार रिवावो अता ती यार रिवावो की रुवां कहाँ ना मान नो लो ही जा के थोड़े लो है नहीं ना हाल मुरिए चकाना मुन्ने मैं के माँ का मोहा मुरुवेरिया इकिना मुतुमी है इकिना मुइसुकेरिया तो ये मंकला जी मुइसुकेरिया पानी मोरवाले के माना वाने ने वेर मारवा का वाले माँ के लाकु मुरुंहा मपचेरे कोलिये तो कोई ये रिंपाने में मुझे के तो पटुला का इकिना कुमरी होते नियो मंकला जी मुथलो का है किन नौवें ये सुरने तू अरे वन को पचेरे का होते ए हाली या वानी पचेरे के बीठो की हाँ पचेरे कम शशान्य मरा पठान्य सिवा वाले आ खाला मा मा ही तो उनको न खाला वो पानेरिया या मिथाला उन्हें नो वां वो हारो खोया मुठु वो पानेरा मरा पठा कंसु वाला मोता उन ठुकी उमांपा कंसु वाला मोता उन थिंपा लेटे नचीरा कंसु वाला नचीरा नियो वो न खाले पासो कंसु वाला न खाले वाचो मोतो वचुआ ये पठा मुरु wera opwehere mitharo tukwe sane ne kansu wela ntoka hikini enlipa naya varie na koso tapara olima tapara omiseria tapara anno cheda ni wathipa ipo ntoka hikini ya rowen lia yothela ya kushiri ya rivi tie ya himiani kubo hilo kihuli hii ya murumu hawa wera kachela no ukumi ha etos we etumeli weni wampa wani yue toka hikini babo Nikelo madela bafe. Masika hiyo maro hile liyo mrene mwana. Mahile liyo mama nole elani. Papa nole elani. Tati nywa nole elani. Wera wawo msulu waka. Muhindu wele kuputa kute. Ikina kumushutreke. Amira wakukinyo roko reo nyomu watareke. Mashutreke mota. Mashutreke mota. Ompompo nyoma. Mota ompompo mope. Wera, okati wa nikela yoku metalama ya mathapa, kusampi, ninyuwano, mwasi kekonyo manyu, mpachare kaware ya shipalame. Kinzi vintinofi.